tu berawi udahyun embalim nimsiode na rari samnane na enenen dor kana thadidna yako tetena tidai na te bhadidnai tu berawi dai dhayu ono dor vadidene thadittiuna dai na temsiwa ottu berawi umasik ibarin umasik malaiwu on umasik areyen ofna dai kike ufna utak take dai kike umasgi henen hadidna yop तो न तुने हरुत उन उधई कस्सा मसगी हुआ रहाय हुआ दाई थयाती हुआ दाई दिवाती हुआ दाई महीना हुआ दाई ने तरेनी उधयून तो बेटाऊ उम असिक ना तिपकी दीन उन ओम हीन शंबीबे का मजालिस कतीनेक वरिब कतीनेक दीम उन उमसगी भदी देन ओ तक उरबा उम असिक उन्ने दई दाई वो उधयून मसगी दाई ने का दाई थयाती दाई ने तो न निकते हिनेन उत्थदी थदी नये नाती मसिक दई नदे तो नाती मसिक मलाई वो अवो गाल हवेती इंदिया को तकत अली दो रेदने थबे अम्बतो थबे आते मासु आबाना उगरु आफीमा दाय ओ ताम तिबिरिये असगारे हमात बूती कितित ओमियाद अली दो रेदेन उत्तुनाती दाय मसिक उकन एहाई मीनी का दाई वो मसिक इन तुंदिवाती दामियक तुंदिवा दाम तीन दाइम तीनी उमसिक दाई वो उमसगी भदीद नई उन उमसिक इतने तो न उन ऊधई इकते ना उफना दाई की के वाला दाई की के तुम्हारे दाई कितते मसिक उन्ने दाई ना तू उन ऊधई गाल अल्लाह हम गाल नाई दे के बरुक ना नाई नायू है ये से दे वाला है ये सन है ना उफना है ये से दे यदि ओ अवो वाला है ये से दे ना नाती यदि एक अवो उन उफना एंदा फगरा इनीन वाला एंदा गोयाब इनीन एदे अतुनाती दाई उफना दाई की के उन उफना उन उधई हगलने तोना तू उन उधई गले अरवे उफना हुआ गले अरवे उफना दाई की के अतुनाती दा एनेन उमसिग नेहरे उमसिग दाई वो हेनेन तोना तुम बतो तुदाइने आदे उन उधई अलियात बूती मसगी दाई ने का दाई था तिब दायन उन उधयून उत्तोन शिव वत्यदनेक उन उधय इमाजालिस इतिनोप उन आंदा इराबा फिना दामी ओब एप्तिक ओकन मिर्बा देप्तिक एफेने कंतित मिर्बा शलिक कात को असमियादीप गीक सामियादीप उधय धुरी वेदने न दासेन उत्तुनाती दाय उत्तु बिडावये उमसिक तिस अली उमसिक अलियाना तू उन उधयून मसगीब दाइने तरेनी दी मराय दाइने तरेनी दाई था तिब दाइने तरेनी बेतुना तीद थस्से हुआ तरमुमा हुआ एमल हुआ इंबरे तु दाइने दे अंबरा उमसिक दाए काब कसीन मसिक दामीने काबू इंबरे तवाइने कूधे ओ नूधे तरमुमा हुआ एमल हुआ तिवाविंदे हुआ तेन तिदाई तु तुशाबू हुआ थस्से हुआ इंबते बरीने ओ नूधायून मसगीब दाएन मसगीब दातनियो लेत लेत वितकाई ओ नूधे रब काब इकतीन उफरा इफ्तिक दईनी आदर इफ्तिक दायन मिड्डा काब इकतीन बेतुनाती दाय उन उफना दाइब की के उफना थरवौता अमकता थयातु कस्तु अमाकतु फेना उन ओधई रंजीद उकन के हाय उन उफना उन ओधई दम्बीर ओधई शलक काब इकसी ओधई गले अराव अंकेरा काब इकसी बेतुनाती दाय इन्हें तो बिडाऊ उधयून कस्सो मीना उमसिक दाये तरेनी उत्तुनाती दाय ओफना तक तक गीक साना ओफना कस्सो गीक साना सगे काभो अकेना अदगिरते ने हदीत का उन उमसिकी भदी दाना उमसिक दबुल काओक न क्वासना बे तुनाती दा इन्हें निन तो बेडावी उधयून दीम मसगी दाईने तरेनी दीम दाए दाईने तरेनी दीम शबुब थाती दाईने तरेने अको बे तुनाती दाय मसगी भदी दाना दबुल काब अकेना गले का रोबा मोटेना नेत उफना इकती महीने का दाइब की के मत इकतीनेक दाब इकतीनेक वरीब इकतीनेक गबाल इकतीनेक बेतुनाती दाय हो अमोट टट्टी ने तोना हुआ फिना बेप्तिक दामिये तोना उम्बतु दायत कित्ते उन उधई अरे अमागनात अको शलिग नातिब का इमहलीगन तुंदिवा हुआ वहाशून अनी हाशू हाशून बरियो खाशू कक्सा काबू दीती इमोटट्टिन एहन अरे तो नाती का अमक कत है शलिक भलिये इमोटट्टिन एहन शलिक भले नात बा फाइसई नात बा अकाय दिवनु ऊ नातिब अमहसीतित
मेरे बात को ते नहीं बता दा इत की के ओ तुना ती दा ओ नू दई ओ मसिक तवाय ने ना हुआ मसगी व्या के ने ना हुआ मसिक दविल का ओ कसी ने तू न कस्तो तु तुना ती दाय का तू बे तुना ती दा उदई राय दाएं काबू शबुब ती दाएं काबा बे तुना ती दा इन इन तुत्तु बिडावी उधयोन ओ मसगी दा नीतरे दरेनी मसगी दाएने शाला मसगी दा तेना हिनिन दाई न निसरी ओकन अंदा इन एम बलि बने दोकनोप कस्तो तो न तु निसरी वे तुकन दाई न निसरी ओकना बे तुना ती दाई ओ नू धई बे तई दो रदी नने थदित ती वसी भी हुआ ओरा हुआ कसे एम्बरे ते न ती दाई ए दिने तू न तु बिडावी मसगे हराव आयो उमसिक फाला उमसिक दाई बू उमसिक ओरी आयमड आयु उमसिक फरूस हरमड आयु बे तुना ती दाई ऊ तक उमसगी गुदा बे कतियक दाय का था आतिब देनी और तुना ती दा हेने उदयोन मसिक एप्तिक निहरु उन्हें उदयोन दी में मसगी दाई ने तरेनी उमसिक हुआ उमलाई हुआ हमा डाबा बे तुना ती दा उन उदय इम बरे दाय बे अभिकने तोना अरवात